इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: हाय, मैं हूँ आरजे ज्यूस।
3: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
4: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
5: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM। हर

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस। राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमोस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: राइट।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिए। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

साल की तरह इस साल भी रेडियो चिनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464।

1800 180 7178 1800 180 7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे है।
1: व्हाट्सएप पे
0: तभी व्हाट्सएप
2: वायरल ऑन शो व्हाट्स।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्द।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
4: Chinar beats with Harshit Deva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: रेडियो चुनार।

अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वो वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चैनल 90.4 एफएम और लो हाजिर है और जेसस लेकर शो व्हाट्स अप। मजेदार शो वो सब जॉक्सियस के साथ दोपहर के 12 बजे तक हम साथ साथ हैं। रेडियो चनार हर दिल की धड़कन तो मेरी जान से हट दिखा दे रहा।

दोस्तों हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चना 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप। याद रखिए रेडियो चनार हर दिल की धड़कन और इस धड़कन को धड़काते हैं आप। तो फॉलो शेयर सब्सक्राइब करें रेडियो चनार के सोशल मीडिया ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स को फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर। फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम या गूगल करें रेडियो चना 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन, साथ ही कमेंट्स में प्यार जरूर दें। डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या एप स्टोर से। ऐप डाउनलोड करते ही आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी खाने में। आपका अपना रेडियो चनार वाहिद ऐसा स्टेशन जिसे दुनिया के किसी भी कोने में आप सुनकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लीज लॉग इन टू www.radiochanaar.com। जॉक्सीज के साथ मजेदार शो वॉट्सअप सिरेहट मेरी जान धड़काते रहो।

0: to Zeus.
1: Kon aya. Radio Chennai. Radio.

0: Weather update. Regional 90.4 FM, the heart is free, NC of Kashmir. Brother, aaj ka weather.
1: Radio Chennai. Weather update.
0: मस्तर शो वो सब अब एंजॉय कर रहे हैं। मैं हूं जॉक्सिस और क्या कहता है आज का वेदर अपडेट, आइए आपको बताते हैं। आज प्रेडिक्ट किया जा रहा है ओवरकास्ट, और साथ ही साथ आपको बता दूं कि सूरज और चांद के बीच में घमासान चलता रहेगा। बादल सूरज के नजदीक रहकर सूरज को घेरे रखेंगे, आज सूरज वाइल्ड फायर बनकर नहीं चमक पाएगा।
1: वेदर अपडेट।
0: वही देयर आर चांसेस कि शाम होते होते बादल जो गरज रहे थे वो बरस भी जाएंगे। आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस। यू इंडेक्स वीक पर यानी 1 पर है अभी के लिए। ह्यूमिडिटी 82%, विंड स्पीड 2 किलोमीटर्स, विजिबिलिटी 4 किलोमीटर्स। आज का सनराइज हुआ 5:40 पर, आज का सनसेट होगा 7:36 पर। रिचनौर की हॉट फ्रीक्वेंसी पर जॉक्स के साथ मजेदार शो व्हाट्सएप। याद रखिए आपने भी शो का हिस्सा बनना है। 9999904904 इज द नंबर। नौ सिफर चोर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। अब आइए प्रदारी इंस्टाग्राम पर डीएम करके भी आप शो में शामिल हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो के नाम से। हॉट फ्रीक्वेंसी, हर दिल की धड़कन, मेरी जान से रहा।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: Zeus. कौन आया?
1: वायरल है तभी व्हाट्सएप पे
2: रिचार्ज की हॉट इस फ्रीक्वेंसी पर वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। वायरल ऑन व्हाट्सएप एक ऐसा सेगमेंट जहां पर जो वायरल होता है हम पहुंचाते हैं आप तक, क्योंकि कहत ज्ञानी और लोगों ने भी ये बात है मानी कि जाने वायरल है तो व्हाट्सएप पर आ ही जाएगा। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ऑनलाइन ज्वेलरी ऑर्डर करते हैं तो आपको बता दूंगा आपने खरीदा तो

सिल्वर, लेकिन रिसर्चर्स कहते हैं कि वो सिल्वर नहीं है। आजकल हर चीज कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि मिलावट है। मैंने ये था रिसर्चर्स कह रहे, चाहे मसाले हो, तेल, खाने पीने की चीज या कोई पहनने वाला आइटम, बता रहे हैं रिसर्चर्स एंड रिपोर्ट्स कि इनमें है मिलावट। अब ये मसला आई, ये पोस्ट तब वायरल हुआ जब ऑनलाइन ये बात पता चली कि जो भी आप ऑनलाइन स्टफ मंगाते हैं, जिसे सिल्वर बताया जाता है, स्टर्लिंग सिल्वर, 9 to 5 की ग्रेडिंग भी लगाई जाती है। रिसर्चर्स और रिपोर्ट्स ये बताती है कि भैया ये सिल्वर नहीं बल्कि है कैडमियम, एक ऐसा मेल जो कि कतई टॉक्सिक है और इंसानों को दे सकता है दिक्कत, और ऑनलाइन इसे सिल्वर के नाम पर बहुत ज्यादा बेचा जा रहा है। रिसर्चर्स ने रिसर्च की और 92.5% सिल्वर कहा जाने वाला, जब उसे ब्रेक डाउन किया गया तो उसमें से निकला 92.3% कैडमियम। अब ये जो वेबसाइट्स वगैरह है, अगर ऑथेंटिक नहीं है तो ना खरीदे, और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भैया 9 लाख का मंगाने से पहले एक बार ऑफलाइन शॉप्स को भी जरूर टटोले। वायरल था व्हाट्सएप पर, आ चुका है हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर। मैं हूं जॉक्सी, आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप, मेरी जान, सिटे हट, धड़काते रहो।

0: The Mix.
1: Hi, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM. छोटा लंदन, जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
2: अदब की नगरी बांडीपोरा तक

0: ये लोलाप के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: seduce. कौन आया?
1: एंजॉय कर रहे हैं आप मस्तार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो रेडियो चुनाव 90.4 एफएम पर. जी हाँ, व्हाट्सअप शो में श्री अमरनाथ जी यात्रा अपडेट्स. आपको बताते चले कि श्री अमरनाथ जी यात्रा और ये पावन यात्रा का सफर जो है तकरीबन 4,14,000 लोग जो है संपूर्ण कर चुके हैं. अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा है तो प्लीज मेक श्योर कि आप SOPs और गाइडलाइंस सेफ्टी मेजर्स को जरूर फॉलो करें. तकरीबन 6 दिन सस्पेंड रही यात्रा हाल ही में रिज्यूम हुई है और वेदर और कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट जो है नेसेसरी स्टेप्स उठा रही है और उठाती रहेगी. आपकी सेवा में सभी लगे हुए हैं, याद रखिए. बस जरूरी है कि आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके ही आगे बढ़े. हेवी मॉनसून सीजन के चलते बताया जा रहा है कि टेम्परेचर में उतार चढ़ाव का सामना भी हो सकता है. हायर टेम्परेचर जो है 13 से लेकर 16 डिग्रीज के बीच में और मिनिमम टेम्परेचर जो है रात को डिप हो सकता है इन बिटवीन 3 to 6 डिग्री सेल्सियस. टीम रेडियो चुनाव 90.4 FM, आपकी यात्रा सफल और संपूर्ण हो.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1800-180-7178 1800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हाय मैं हूँ आरजे सियू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम हर दिल की धड़कन।
4: दोस्तों हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट कहता है कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड्स द सनशाइन एंड शैडो विल फॉल बिहाइंड यू। और इस फ्रीक्वेंसी हर दिल की धड़कन रेडियो चिनार से धड़काते रहा।

दोस्तों रेडियो चिनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी, आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो वासा। इसे मजेदार बनाता है आपका साथ, आपकी बात, आपका विश्वास, वो प्यार जो आप रेडियो चिनार के लिए दिखाते हैं। बरबर के प्यार भेजिए, अपनी बात हम तक पहुंचाइए। आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज। 8888-9904904 इज द नंबर। आप बताए गए नंबर के अलावा डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मिलूंगा ज्यूस द बैड बॉय रेडियो के नाम से। डाउनलोड करें हमारा ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। एक फ्री ऐप डाउनलोड करने से ये होगा कि जब आप हमारा रेडियो चुनार का ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करेंगे, आप हमें सुन पाएंगे लाइव दुनिया के किसी भी कोने में। जी हाँ, कंप्यूटर्स पर लॉग इन करें www.radiochunar.com, वहां पर आप जान पाएंगे रेडियो चुनार के बारे में और साथ ही सुन पाएंगे।

देखेंगे लाइव, हमें घर में, गाड़ी में या ऑफिस में। नेगेटिविटी इज डेंजरस, आज का टॉपिक रेडियो चुनाव पर सिटी हक, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो।

0: 고마워요.
1: 주스.
2: 주스. 리전 90.4 FM 허리들 깨들 캐나 엔조이 가라야마스 다르쇼. What's up? What's up, 좀 해야지 봐 도리 해. 큐 해. 내게 리비디 dangerous. 캬 해. 내게 리비디 세 빠르네 와래. Bad effects. आप भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं 8899904904 इज द नंबर आप कॉल कर सकते हैं व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज याद रखिए फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम एक्स पर आपको मिल जाएगी रेडियो चनार के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स जहां पर आप फॉलो शेयर सब्सक्राइब करके और भी इंफॉर्मेटिव एंड एंटरटेनमेंट सेगमेंट्स देख सकते हैं

और दिल की धड़कन रेडियो चुनार। जी हाँ, जब भी हम नेगेटिविटी की बात करें तो अक्सर इंसान इस चीज़ को हल्के में ले लेता है कि भैया हम तो नेगेटिव सोचते हैं लेकिन उससे क्या कुछ ही होता है, मैं आदत नेगेटिव सोचूं या मैं नेगेटिव सोचना से क्या आइडिया है मेरा। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो जब भी आप नेगेटिविटी या नेगेटिव थॉट्स को अपने जिस्म

अपने दिमाग में जगह देते हैं तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होता है और हार्ट प्रॉब्लम्स का खतरा बढ़ता है। साथ ही साथ डॉक्टर्स का ये कहना है कि आपका ब्रेन भी डैमेज हो सकता है जिसका असर आपकी मेमोरी पर पड़ सकता है। वही इट फ्यूल्स ऑन गोइंग एंजाइटी फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस एंड डीप सैडनेस। एक इंसान के दिमाग में जो है सुसाइड थॉट्स भी घर कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी। और वही अगर हम देखें तो ओवरऑल लाइफ पर भी इफेक्ट पड़ता है। प्योर चॉइसेस मिस चांसेस एंड बैड आउटकम जस्ट बिकॉज आपके बैड साइकिल शुरू हो जाते हैं व्हेन यू आर इनटू नेगेटिविटी। और जो लोग अक्सर नेगेटिव रहते हैं नेगेटिविटी को जगह देते हैं तो उनसे जो पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग हैं वो अपना रास्ता अलग कर लेते हैं, वो दूर होने लगते हैं जस्ट बिकॉज कि वो नेगेटिविटी को जगह देते हैं, उनका माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है और नेगेटिविटी ही वो जीते हैं। तो पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग उनके आसपास क्यों रहेंगे। और ऐसे लोगों की ग्रोथ भी बहुत कम होती है। जी हाँ, डर में जीने वाले लोग, नेगेटिविटी के साथ जीने वाले लोग अक्सर इस चीज का सामना करते हैं कि उनकी जिंदगी डर के अंदर ही बीत जाती है। अब चॉइस आपकी है कि आपको किस तरह से जीना है। एक पॉजिटिव सोच रखने वाला बंदा पॉजिटिविटी के साथ जीता है, जिंदगी में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ता है। तभी तो आज का टॉपिक है नेगेटिविटी इज डेंजरस। मैं हूं जॉक्स्यूस, हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर बातचीत जारी है। बने रहें, सुनते रहें हर दिल की धड़कन को, धड़काते रहें।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Kom maar, ja.
1: Tjus.
2: और दिल की धड़कन को धड़का रहे हैं आप और हम मिलकर सुन रहे हैं मजेदार शो वसा। ये है रेडियो चनार, मैं हूं जागजीस और आप है हमारा प्यार। जी आज बात हो रही है, टॉपिक है नेगेटिविटी इज डेंजरस। अब जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए तो कैसे आप बच सकते हैं, चलिए बताते हैं। यहाँ पॉइंट ये है कि रिसर्चर्स का कहना है कि ऑब्जर्व किया गया है जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए तो आपको ये जानना है कि नेगेटिविटी क्यों आ रही है, किस बात को लेकर आ रही है। फैक्ट चेक करें और फैक्ट्स को वेरीफाई करें ताकि आपका दिमाग जो है सच्चाई और हकीकत पर पॉजिटिविटी की ओर बढ़े। अपने भी ब्रेन को फोकस कर

आना पॉजिटिव फैक्टर्स पर फोकस शिफ्ट करना आपको नेगेटिविटी से बचाता है। और आजकल भैया जमाना ऑनलाइन है तो ऑनलाइन नेगेटिविटी भी आती है। आप कुछ अपलोड करते हैं, लोग इतनी नेगेटिविटी झाड़ते हैं कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है ऐसा जो स्ट्रेसफुल कंटेंट है उससे बचे, और ऑनलाइन जो आप अपने दिमाग को फीड कर रहे हैं उसे एक बार मॉनिटर जरूर करें और उसके बाद ही अपने दिमाग में ऐसी चीजों को जगा दें। फिलहाल तो दीदार दीजिए मेरे यार, रेडियो चुनाव को चाहिए आपका प्यार तो बरबर के प्यार हम तक पहुंचाए। अपनी बात हमें बताएं 9999904904। ये मैजिकल बटन्स अपने फोन में दबाएं और आप टेक्स्ट करें, व्हाट्सएप या कर सकते हैं कॉल भी। यहाँ करके कॉल हमें बताइए अपने दिल का हाल, क्योंकि वेट है लाल। ये है रेडियो चुनाव की हॉट फ्रीक्वेंसी, मैं हूँ जॉग ज्यूस। आपने धड़काना है तो धड़काते रहो।

the radio channel 90.4 of them up. Enjoy kar rahe hain Mazdar show. What's up? What's up show mein agli peshkash TikToks and Bollywood news. जी हाँ, टेक वर्ल्ड से अपडेट्स और साथ ही साथ बॉलीवुड की तड़कती पड़कती खबरें भी। कुछ ही देर में जरा सा इंतजार, देते रहो प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। मैं हूँ जॉक्स और याद रखिए कि रेडियो चला सही है मेरे यार।

0: bunch of zoos.
1: Kon aaya?
2: रेडियो चुनाव 90.4 एफएम आप एंजॉय कर रहे हैं मस्तार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में बॉलीवुड न्यूज़। बॉलीवुड न्यूज़ में ये बात करते हैं सबका भाई सबकी जान सलमान खान। जी हाँ, कोलाहलम कंट्रोवर्सी जिसके चलते बहुत सारे इल्जाम और वीडियोस हमें देखने को मिले सलमान भाई से रिलेटेड, लेकिन सलमान भाई ने बोल दिया था क्या और फाइनली आ गए और कोर्ट से ले लिया है इमीडिएट ऑर्डर, जिसमें ये कहा गया है कि काला हिरन का टीजर से लेकर जो भी इंटरव्यूज दिए गए हैं, इवन वे द डायरेक्टर इज स्पीकिंग अबाउट सलमान खान एंड द कंट्रोवर्सी, वो सब डिलीट करे जाए। अब भाईजान का ऑरा जो है प्लस 9000 से 9999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999 स्टैंड पर फिल्माए हुए आउके वाले गाने आपके लिए। रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर मैं हूँ जॉक्सूस, मेरी जान दरगाह दे रहा।

0: कौन आया?
1: बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़, बॉलीवुड न्यूज़।
2: रेडियो 90.4 एफएम मजेदार शो व्हाट्सएप व्हाट्सएप शो का सेगमेंट बॉलीवुड न्यूज़। जी हाँ, बॉलीवुड न्यूज। और बॉलीवुड न्यूज में आइए आपको बताते हैं कि चर्चा हो रही है बादशाह की। बादशाह जो कंट्रोवर्सी के पास नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी खुद इनके पास भागी हुई आती है। रिसेंटली पोस्ट किए गए और वायरल हुए पोस्ट जहां पर यह बताया जाता है कि बादशाह ने कर ली है शादी इशिका राखी से और इशिका की मम्मा का कुछ और ही कहना है। उन्होंने अगेन इसके दिया है अपना बयान और मेरी जान उन्हें नहीं पसंद आया मोहब्बत का ये बादशाह वाला पान। अब ये कंट्रोवर्सी किस रुख मुड़ती है वो तो हम भी देखेंगे। अभी हॉटेस्ट रेजेंसी पर बने रहें, हर दिल की धड़कन को धड़का दे रहे हैं। मैं हूं जॉक्स, उससे रहक धड़काते रहो।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। Only on Radio Channel 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।
2: Bollywood News।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे, बोलेंगे जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर, एवरी वेंसडे एंड सैटरडे, रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Kom nou ja.
1: Tech Talks
2: with RJ Zeus. Radio 91.4 FM, आइए करते हैं Tech Talks. जो है Tech Talks एक ऐसा सेगमेंट जहां पर हम आप तक पहुंचाते हैं Tech World से related updates. GTA, one of the famous games जो कि worldwide खेली जाती है, प्यार मिलता है. GTA is a kind of limitless game जो कि लोग खेलना और खिलाना पसंद करते हैं. आज के Gen Z का favorite time pass and addiction to the games is increasing every day. वही GTA से report आ रही है कि उन्होंने एक Indian गाड़ी भी game में add कर दी है. अगर आप रोला जमाने वाली फॉर्च्यूनर सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है. और कोई गाड़ी, जी हाँ, ऐसी गाड़ी जो कि भरोसे का नाम है, टाटा सियारा, बताया जाता है GTA 6 में हमें दिखाई देगी. ये टेक अपडेट आपको कैसा लगा? 8899-04904 आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप या कर सकते हैं टेक्स्ट मैसेज. जुड़े हमारे साथ, अपनी बात हम तक पहुंचाए. रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन जोरों से धड़काए. मैं हूं जॉग्स, तड़काते रहो.

की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पर सेगमेंट टेक टॉक्स, और टेक टॉक्स में आइए आपको बताते हैं व्हाट्सएप का नया फीचर। एक्चुअली इस व्हाट्सएप वेब, अगर आप सिस्टम्स वगैरह पर व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि लिंक डिवाइस के थ्रू आप व्हाट्सएप वेब पर अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं, और वही वहां पर भी एक नया ऑप्शन व्हाट्सएप की तरफ से रोल आउट किया गया है। बड़ी दिक्कत होती थी पहले आपको लिंक्स क्रिएट करना, दूसरे सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो कंप्यूटर्स या माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स पर या आईओएस डिवाइस पर अवेलेबल नहीं थे, अब वो दिक्कत व्हाट्सएप ने सॉल्व कर दी है। रुको, जरा सब्र करो, बता रहा हूँ, मुझे बताया आप विचलित हो रहे हैं। कौन सा ऑप्शन? जी हाँ, ऑप्शन ये है कि व्हाट्सएप ने रोल आउट किया है व्हाट्सएप वेब के लिए ऑडियो एंड वीडियो कॉलिंग सपोर्ट, और इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। अब मीटिंग्स वगैरह पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कंप्यूटर में लगा हुआ कैमरा ऑन करेंगे और उसके बाद इस ऑप्शन का लाभ ले पाएंगे। ये ऑप्शंस पर भी ऑप्शंस दे रहा है व्हाट्सएप। क्या है आपकी व्यूज, इमोशंस, थॉट्स हमारे साथ शेयर करें। 8999-04-904 इज द नंबर। मैं हूँ जॉक्स, श्रेयक, धड़काते रहो।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshadeepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

लो जी, आपने पुकारा, मैं चले आया आपसे ढेर सारी बातें करने। 90.4 रेडियो चनार ब्रागा सो चुका है शो चनार बीट्स का विद वुलन वाइब एंड ट्राई बीट्स ऑन रिपीट, क्योंकि बॉस ये है शो चनार

बीट्स ऑन रिपीट शो चुनाव बीट्स आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 FM। ढेर सारी बातें मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट के अलावा ढेर सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है। Well, I was super excited, हमेशा की तरह कि आखिर क्या है चला और क्या है अपडेट्स यानी कि क्या है बेहतरीन थी सुबह सुबह की थॉट जिससे आपने अपने दिन की शुरुआत की एंड वॉट इज हैपनिंग ब्रदर एंड वेदर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एंड स्पेशली हमारे जज्बात काफ़ी डिफरेंट है एंड हमेशा हम सोचते हैं कि सुबह सुबह मैं

बच्चों तो मेरे से बात करेगा कौन, मैं कह रही हूँ मैं करूँगी, मैं तो बेताब हूँ आपकी बातें सुनने के लिए। अब देखिए मैं तो हूँ ही, आप भी है, जज्बात है, हालात है, ख्यालात है और क्या कुछ है, वो भी तो हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। बट ये है कि अकेले मज़ा नहीं आता, मज़ा क्यों नहीं आता, देखिए आप है, मौका है, दस्तूर है, कहाँ जा रहेगा हजूर। बिकॉज एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी हम आप तक पहुँचाते हैं, क्या है थीम, क्या टॉपिक्स है, यानी कि हर चीज़ पर चर्चा होती है। अब अगर चाय की चुस्की के साथ आप बात मेरे साथ करते हैं तो चाय पर चर्चा भी हो जाती है, नहीं क्योंकि ऐसा ना कि मैं अकेले कुछ बोलूँ और वहाँ से जवाब नहीं आ जाए, अब ये नहीं हो सकता क्योंकि ये मसला है मेरी पूरी वाइब और ट्राइब का। तो वाइब है, ट्राइब है और क्या है, आपने दिल में समाई बातें तो मुझे बताइए शो कैसा बन जाए। जी हाँ, मैं और आप, इट्स मी एंड यू ऑन बैक टू बैक सॉन्ग। अब क्या है आपकी गलियों का हाल, मुझे बताइए क्या है वो सवाल जो आप पूछना चाहते हैं। बैक टू बैक सॉन्ग्स ऑन योर हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि ये है दिल की धड़कन।

Chinar Beats ve Darce Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

बट आई फील गुड, यस आई फील गुड, क्योंकि आप हैं, मैं हूँ और अकेली नहीं हूँ, मेरी पूरी वाइब और ट्राइब है और सफ़र है, तो सफ़र में मैं आपकी साथी हूँ बराबर 2 बजे तक। जल्दी कीजिए, शो का ऐसा बन जाइए। आप सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 91.4 FM। यह है हर दिल की धड़कन, तो मेरे दोस्त

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाएं, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

टोटन और बीट्स एंड अनस्टॉपेबल लाइक अ सेगमेंट जहाँ पे छोटे डोज हर रोज आपके लिए डेली डोज जहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या है दिल का हाल, कुछ हाल जो बेहाल है। कभी कभार दिल भी नहीं सुनता है बातें हमारी और कभी कभी दिमाग भी साथ छोड़ देता है कि नहीं जी हमें भी नहीं पता ये सिचुएशन कौन सी है। तो आपसे पूछती हूँ कि क्या आप ऐसी कभी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पर आपको लगता है कि दिल और दिमाग जो है ना दोनों ही एग्री नहीं कर रहे किसी एक चीज़ से। बट या वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का एक सही टाइम होता है और अगर हम थोड़ा सा भी टाइम देते हैं तो हम समझ आते हैं कि क्या सुनना चाहिए दिल और दिमाग, या इस कश्मकश में हम डूब जाए या फिर ये है कि दिल और दिमाग एक साथ मिलके हमें बहुत कुछ समझाता है। तो कभी कभार उन आवाज़ों को, ऐसे इंट्यूशंस को हमें ऐसे कहते ना कि जाने नहीं देना चाहिए, हम नज़रअंदाज करते, बट वही तो हमारी गलती होती है। कभी कभार हमारा दिल और दिमाग बहुत सही होता है और वो जो हमें कहते हैं कि आप ये कीजिए ये सही डायरेक्शन है, शायद से आप आगे बहुत तरक्की करोगे। तो वो चीज़ हमें कभी कभार सुन लेनी चाहिए और हमने अपने दिल और दिमाग का फैसला लेकर ही लाइफ में उस एक चीज़ को चुनना चाहिए। एंड आई नो कि बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इतना ज़्यादा डेल्यूजन हो गया ये कि क्या किस बारे में बात कर रहे हो, ये कहना क्या चाहते हो। सो मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। अब मेरी पूरी वाइब और ड्राइव इतनी स्मार्ट है ना कि वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या, या फिर कभी आप ऐसे डेल्यूजन में फंसे हैं जहाँ पर आपको नहीं आया समझ? सो अभी के लिए इट्स डेल्यूलो इज़ द रियल सेल्यूलो, बट आपके लिए क्या है डेल्यूलो और कैसे आप उस चीज़ से डील करते हैं मुझे बताइए। शो कैसे बन जाए क्योंकि 8899-0494 पर हम आपकी सुनते हैं, आप मेरी सुनते हैं और ये सिलसिला यूँ ही जारी है।

देखिए बयान कर ही सकते हैं आप, फिर से बता रही हूँ 8899904904 आप कॉल टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और दैट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुना 91.4 FM को।

0: चोरी
1: क्या? कपड़े कैसे पहन रखे तुमने? ये बैक पे टैटू तुमने कब बनवा? और ये गोरा कौन है तुम्हारे साथ?
2: गोरा भी
1: कोट ओवर भी। भाई साहब यहाँ क्या कर रहे हो?

0: खबर ऑनलाइन लेकर मैं हूँ हाजिर तुम्हें बुझो तो खबर विस्तार संत क्या चल चे खबर हम छे तह तम वातनावान
1: स्वागत है आज की ताजा न्यूज में हम
0: और ताजा ताजा न्यूज हो तो मजा ही आ जाता है। और ताजा ताजा न्यूज अब क्या है, देखिए अगस्त की बात करें तो बहुत सारी मूवीज आने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि कहीं आवारापन की बात तो नहीं हो रही है। नहीं नहीं नहीं नहीं, उसके बाद बिल्कुल उसके बाद, यानी कि 14 अगस्त नहीं बल्कि बराबर 26 अगस्त को मूवी आने वाली है टॉक्सिक। अब नाम ही ऐसा है टॉक्सिक। अब टॉक्सिक है ही इतनी टॉक्सिक कि ट्रेलर से, अभी ट्रेलर तो नहीं है पर हाँ सॉन्ग से पता चल रहा है, चाहे फिर हम तबाही देखें या फिर मदहोश जो रिसेंटली अभी सॉन्ग रिलीज हुआ है। अभी अगर हम देखें दैट्स वेरी डिफरेंट, एक अलग ही वाइब मिल जाती है हमें, सॉन्ग से समझ आता है। स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है बिकॉज यश की बात करें जैसे वो हर एक औरत के साथ, मल्टीपल औरतों के साथ इन्वॉल्व है इस मूवी में, वो काफ़ी लोगों को नापसंद आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकते हैं भैया, कविता रस्तार या कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, मतलब ये चल क्या रहा है, यानी कि मूवी का नाम टॉक्सिक है, सॉन्ग्स भी टॉक्सिक है और हमें क्यों देखनी चाहिए टॉक्सिक। मतलब भाई कुछ लोग हैं जो यश के काफ़ी पुराने फैन हैं, कियारा के फैन हैं, सिद्धार्थ के फैन हैं। आप देख लीजिए कि अभी क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, कंट्रोवर्सी भी है इस चीज़ की कि

0: आप एक ही, यानी कि आप जेंडर बाइस्ड हो रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो यश को काफ़ी तारीफ मिल रही है और लड़कियों को काफ़ी हेट मिल रहा है, ये नहीं चलेगा। यानी कि बहुत सारी बातें हो रही है मूवी के रिलेटेड, बट ऐसा लग रहा है कि मूवी सुपर डुपर हिट होने वाली है।
1: आज की खबर, आज
0: हम, मुझे बताइए कि क्या आपने ये सॉन्ग्स देखे, आपको थोड़ी सी भी मूवी समझ आई कि क्या होने वाला है? क्योंकि वही है कि

0: देखिए यारी तो आपकी और मेरी है, ये बस बोल देना बिना कोई नशे ही ये उतरने का नाम नहीं लेती और ये ठान लेती है कि आप है मैं हूँ तभी ये सफर जारी रहेगा।
1: Chinar Beats with RJ Deepa, only on Radio Chinar 90.4 FM.

जी हम बीट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स अब एंजॉय कर रहे हैं और रेडियो चुनार 90.4 FM डे सारी बातें हम कर रहे हैं और देखिए शो पे इम्पॉर्टेंट है कि जब हमारा टॉपिक की बारी आती है जी हाँ अब टॉपिक की बारी है तो किस बारे में आज हम शो पे बात करने जा रहे हैं। वैसे बीट्स ऑन रिपीट है, एंटरटेनमेंट है, पर जब भी स्पेशल कोई डे आता है, जब भी कोई स्पेशल दिन होता है तो हम मिलके सेलिब्रेट करते हैं और आज भी एक ख़ास दिन मनाया जाता है हमारे देश में। और वो देश क्या, देश में कौन सा दिन है जो हम सेलिब्रेट करते हैं, इट्स आपको बताते हैं कि इट्स गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा जो एक स्पेशल दिन है जो हमें अपने गुरुज और टीचर्स को रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड देने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। गुरु जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमें सिखाते हैं, एक सही रास्ता दिखाते हैं ज़िंदगी में हमें क्या करना चाहिए, एक हेल्प हमें मिलती है कि हम कुछ बेटर बन सकते हैं। और मुझे लगता है कि उस्ताद ही माँ बाप के बाद अगर कोई एक इंसान है जिस पर हम भरोसा करते हैं, जो हमें लगता है कि हमें सही रास्ता दिखा सकते हैं, एंड दैट्स ओनली आवर टीचर, दैट्स आवर गुरु। और आज का दिन क्यों मनाया जाता है तो महर्षि वेद व्यास जो उन्होंने इस दिन पे जो उन्हें समर्पित हुआ, जिन्हें हिंदू परंपरा में एक महान गुरु और स्कॉलर माना जाता है, और क्यों माना जाता है और क्या है उनकी टीचिंग्स, उनकी टीचिंग्स पे लोग उनको कितना मानते हैं, आज शो चिनार बीट्स पर बात हो रही है गुरु पूर्णिमा के बारे में। आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं, अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है गुरु पूर्णिमा के बारे में तो जल्दी से बताइए, शो का हिस्सा बन जाइए। देखिए यही है ना कि जो हम टीचर्स की बात करते हैं ना वो जुबान भी लड़खड़ा जाती कि भाई टीचर्स का डर भी लगता है, बट ये है कि टीचर्स ने हमें बहुत कुछ सिखाया होता है, वो चाहते हैं कि हम जिंदगी में बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो जाए।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Beats on repeat, show Chunar Beats up, enjoy kar rahe only on Radio Chunar 90.4 FM and we are talking about जी हाँ हम बात कर रहे हैं एक खास टॉपिक एंड दैट इज़ गुरु पूर्णिमा एंड वाई वी आर सेलिब्रेटिंग इट क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं हमारे जो गुरुज़ हैं जिन्होंने हमें सिखाया है पढ़ाया है ज़िंदगी में किसी काबिल बनाया है और उनके लिए एक वर्ड ही सही यानी कि उनकी सिखाई गई चीज़ों पर चलना अमल करना वो कितना ज़रूरी है एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम हमारे गुरु जो है वो एक टीचर ही होते हैं हमारे माँ बाप जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं हमारे टीचर्स जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं बट ये है ना कि सक्सेस मिलना नहीं मिलना वो दूसरी बात है आप जब सही रास्ते पर चलते हैं एटलीस्ट आपको मलाल नहीं रहता है कि हमने कुछ सीखा नहीं है या फिर किसी गलत रास्ते पे चल के हमने कुछ हासिल किया है इट्स ऑलवेज़ अबाउट ट्रूथफुलनेस इट्स ऑलवेज़ अबाउट राइट पाथ एंड इट्स ऑलवेज़ अबाउट कि आपने ज़िंदगी में अपने टीचर से अपने गुरु से जो सीख ली है वो उससे आपको क्या चीज़ हासिल हुई आपको एक मन की शांति मिलती है आप मेंटली सही रहते हैं और हमेशा जब आप सक्सेस पा लेते हैं अपने सही रास्ते की वजह से तो हम हमेशा अपने गुरु को अपने टीचर्स को याद करते हैं कि अगर वो हमें सही चीज़ें ना सिखाते तो हम शायद ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ पाते आपकी ज़िंदगी में आपका गुरु आपका टीचर आपका वो पर्सन कौन है जिसने आपको सही गाइडेंस की है ज़िंदगी में कुछ बनाया है और आप उन्हें शुक्रिया कहना चाहते हैं 8899904904 पर कॉल कीजिए टेक्स व्हाट्सएप कीजिए और शो चुनार बीट्स का हिस्सा बन जाइए

दिलों का इश्क ही तो देता फिरता है गवाही, वरना बता खुदा होने का सबूत क्या है।

Chinar Beats with Harsh Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

इट्स ऑन रिपीट शो चुनार बीट्स. आप एंजॉय कर रहे हो ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM. ढेर सारी बातें हो रही हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट बुद्धा, नहीं जी हाँ, गुरु पूर्णिमा. और इसमें बहुत सारी बातें हैं जो हमने गुरु से, अपने टीचर से सीखी है, उस बारे में बात हो रही है. बट साथ में आपको बता दें कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो कि 3 जुलाई से स्टार्ट हुई और अभी भी चल रही है, और आपको बता दें कि 4,14,000 लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं और अपनी अमरनाथ की यात्रा जो है वो कंप्लीट की है. और अभी भी आपको बता दें कि आज 2,050 जो पिलग्रिम्स है वो निकल चुके हैं जम्मू से और बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आ रहे हैं. एंड मुझे लगता है कि जो यात्री आते हैं और मन में एक आस्था होती है कि हमें बाबा बर्फानी के दर्शन करने हैं, और रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन वो इस चीज़ की परवाह ना करते हुए अपने मन में जो भक्ति का वो जुनून होता है उसको बनाए रखते हैं और पार करते हैं और अपने दर्शन मुकम्मल करते हैं. और आपको बता दें कि अभी भी यात्रा चल रही है, और कल की अगर हम बात करें, अभी भी यात्री जा चुके हैं 4,000-2,000 हर दिन जो है यात्री जा रहे हैं बाबा बर्फानी के दर्शन करके आ रहे हैं. अगर आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन करना चाहते हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा करना चाहते हैं, यात्रा पर आना चाहते हैं, तो आपको जो श्री अमरनाथ जी यात्रा श्राइन बोर्ड से, आपको उस वेबसाइट से आपने बाकी डिटेल्स मिलेगी. आप आ सकते हैं, अभी भी टाइम है. बट ज़रूरी है कि हमारी जब यात्रा मुकम्मल होती है तो मन में वो खुशी और भी बढ़ जाती है. शो चुनार बीट्स आप सुन रहे हैं ऑटो फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनार 90.4 FM.

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

बेस ऑन रिपीट शो चुनार बीट सब एंजॉय कर रहे थे ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम। डे सारी बातें तो हमने की एंड वी वर टॉकिंग अबाउट गुरु पूर्णिमा, जो हमारे टीचर है, जो हमारे गुरु है, उनके लिए आज ये सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे हिंदूज की बात करें, बुद्धिस्ट की बात करें, जैन्स की बात करें। यानी कि ये काफ़ी ज़रूरी है अगर हम देखें, इट्स काइंड ऑफ एक्सप्रेसिंग थैंक्स टू आवर गुरुज, टीचर्स, मेंटर्स, सो दैट कि हम समझ पाए कि उन्होंने हमारी ज़िंदगी में कितना अहम रोल अदा किया है। सो फिलहाल के लिए मेरा रोल तो ख़त्म हो चुका है चनार बीट्स में, और शो म्यूज़िक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है, यानी कि आपकी डिमांड स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर आप अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। 8899904904 को आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं। फिर से बता रही हूँ, 8899904904 आप टेक्स्ट व्हाट्सएप करके शो में शामिल हो सकते हैं और अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं अपने लाउड फंस को ऑन योर रेडियो चुनार 90.4 एफएम। तो जल्दी कीजिए, शो का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि शो म्यूजिक ऑन डिमांड स्टार्ट हो चुका है।

देखिए, जब भी शो म्यूजिक ऑन डिमांड की बात आती है तो वो कुछ ऐसे रेगुलर लिसनर से, जैसे कि जाकिर ने मैसेज किया कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब आप मेरी मैसेज शामिल नहीं करते, तो एकदम बहुत ही कीनली आपकी प्रोग्राम सुनता हूँ और फिर आप मुझे इग्नोर करते हैं। नो वेज, ऐसा नहीं हो सकता। हमें तो अच्छा लगता है जब आप हमसे शिकायत करते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं, सच में हमसे बात कीजिए। देखिए, कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारी कॉल्स आती है, बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो वो इग्नोर हो जाता है बीच में। बट विल बी केयरफुल कि आपकी मैसेज सबसे पहले हम कंसिडर करें शो में। शॉर्ट में बतलाती हूँ कि थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। इन्जॉय कीजिए ट्रैक, आप के लिए ये ट्रैक है। हमें अच्छा लगता है जब आप हमसे कोई

करते हैं और रेडियो चुनार से बहुत प्यार करते हैं। शो म्यूजिक ऑन डिमांड 88999044 पर आप अपना फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं। टेक्स व्हाट्सएप कीजिए, शो म्यूजिक ऑन डिमांड का हिस्सा बन जाइए।

शो म्यूजिक ऑन मान अब एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन रेडियो चुनाव 90.4 एफएम. ज़ैनब की रिक्वेस्ट आई है इस ट्रैक के लिए पल पल तलविंदर की आवाज़ में. अभी एंजॉय कीजिए अपना फेवरेट ट्रैक सुनने के लिए 8899904904 पर कॉल कीजिए, टेक्स्ट व्हाट्सएप कीजिए और शो म्यूजिक ऑन मान का हिस्सा बन जाइए.

तो ये वफा पे कोई शक ना कीजिए, क्योंकि वफा निभा लेते हैं और लोग भी ये कहते हैं कि हमें रेडियो चुनार के सारे शो काफ़ी पसंद है। और खासकर नुसरत की ये बात बहुत ही अच्छी मुझे लगी कि आपके जो शोज़ हैं मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, सभी सुनती हूँ, थैंक यू सो मच हमारे शोज़ को पसंद करने के लिए। और ये आपके लिए ट्रैक हमने चलाया है, और ये शो म्यूज़िक और नुमान का लास्ट ट्रैक है, क्योंकि शो ख़त्म हो चुका है। और अभी जिन लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है उनके रिक्वेस्ट हम कल शो में शामिल करेंगे बराबर 1:30 से लेकर 2 बजे तक। फिलहाल के लिए शो म्यूज़िक ऑन डिमांड ख़त्म हो चुका है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस थोड़ा सा टाइम है, फिर से वापस आऊँगी एक और स्पेशल शो लेकर। अब सुन रहे हॉरस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो चुनाव 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: रेडियो गर्ल्स अब एंजॉय कर रहे हैं और रेडियो चुनाव 90.4 FM डे सारी बातें हो रही है और मैं अकेली थोड़ी बात करती हूँ, मेरे साथ असरा होती है और हम शो रेडियो गर्ल्स पर सखियों के बारे में ही नहीं बल्कि हमारी एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। यस, इट्स विमेन ओरिएंटेड शो बट वी यूजुअली टॉक अबाउट कि लड़कियों को क्या पसंद है और लड़के कैसे लड़कियों के नखरे उठा दे। क्यों असरा?
1: हाँ बिल्कुल, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट विमेन एंड दैट सॉफ्ट लाइफ। सॉफ्ट लाइफ इन द सेंस कि कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ वो कोई आपको प्रेशराइज नहीं कर रहा कि कुछ करने का या कुछ करने के लिए अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर वो प्रेशर नहीं होता किसी चीज़ से रिलेटेड। और ऑनेस्टली ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। और अगर अभी की बात करें तो फॉर वुमेन हैविंग अ सॉफ्ट लाइफ, नॉट डूइंग सो लाइक सो मेनी थिंग्स जो मैस्कुलिन ट्रेट्स खुद में डेवलप ना हो, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वी शुड एम्ब्रेस आवर फेमिनिन एनर्जीज
0: एंड आई गेस इट्स ऑल्सो दैट वी शुड प्रायोरिटाइज आवर कम्फर्ट, आवर जोन, क्योंकि अगर सॉफ्ट लाइफ एरा की बात करें इट्स वेरी डिफरेंट। इट्स दैट जहाँ पर हम मेंटल पीस की और ज्यादा वेर वी नो कि एक बाउंड्री होती है और बाउंड्री लाइन के पार जो है वो पार ही लोग है। जो बाउंड्री लाइन के आर है वो हम है, हमारा मेंटल पीस हमारी लाइफ है एंड वी डिसाइड कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। और ये आई गेस इट्स नॉट कॉल्ड ए सॉफ्ट लाइफ है, राइट? इट इज डेफिनेटली आर प्रायोरिटाइजिंग आर पीस, प्रायोरिटाइजिंग आर लाइफ, लाइफ स्टाइल।
1: एग्जैक्टली, और मुझे भी ऐसा लगता है कि सॉफ्ट लाइफ की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है, जैसे आपने भी बोला दीवा, कि एक वो सेल्फ केयर होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए। बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो हम खुद के लिए कर सकते हैं, या जैसे बहुत सारे लोग लाइक वुमेन हु गो टू सलॉन्स, हैव अ हेयर वॉश, मैनीक्योर, पेडिक्योर, ये सारी चीजें बहुत ही, अगर देखा जाए ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप खुद का ख्याल नहीं रख रहे बल्कि एक रिचार्ज होती है। यू डू समथिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर योर सोल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
0: दैट्स इंपॉर्टेंट एंड आई गेस इट्स दैट एक्ट ऑफ रिजेक्टिंग थिंग्स जो हमारे लिए सही नहीं है, जो हमारी चीजों को सही नहीं लगती है।

0: And I feel this is the best thing the women can do for their self, and this is the best thing that the girls can do for their living.
1: Exactly.
0: And I believe जैसे आपने बताया ना कि इंसान को अपने कम्फर्ट जोन, इट्स नॉट अबाउट कम्फर्ट जोन, इट्स अबाउट आपको क्या पसंद है. कोई चीज़ जो लोगों को पसंद नहीं आती, आपको लगता है कि एक हमारा स्ट्रेस है वो बढ़ रहा है, तो ज़रूरी है कि वो दूर करने के लिए हम अपने उस सॉफ्ट लाइफ में चले ही जाते हैं. हमें पता होता है कि एक जोन है हमारा जिसमें हम ये स्ट्रेस रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ हमें अपना आप नजर आता है. एंड इट्स नॉट समथिंग दैट कि हम बोलते हैं हम है तो और कोई भी नहीं. नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट. इट्स अबाउट कि हम अपना मेंटल पीस प्रायोरिटाइज करते हैं, और हर एक को करना चाहिए. अब नाम तो बड़ा है सॉफ्ट लाइफ एरा, बट इट्स अबाउट चूजिंग योर सेल्फ.
1: एग्जैक्टली. एंड ऑनेस्टली जैसा कि आपने कहा कि एक जोन होता है, और मुझे लगता है कि हफ्ते में एक दिन तो सबके पास होता है, संडे
0: इवन सैटरडे से हम एक्साइटेड होते हैं.
1: आई थिंक गॉड्स फेवरेट किड्स हैव सैटरडे ऑफ आल्सो. आई थिंक जो सैटरडे भी ऑफ होता है, संडे भी ऑफ होता है. संडे तो यूजुअली सबका ही होता है. यू कैन टेक योर टाइम, जो भी सुन पा रहे हैं हमें, आप अगर कोई कहते हैं ना कि मैं रिकॉर्ड जैसा बिजी आसा गरज कम छे शुरच पालन कुछ करो नीच करो, वो सब चीजें होती रहती हैं. बट संडे एक ऐसा दिन है वेयर यू कैन एक्चुअली रिचार्ज
0: योरसेल्फ.
1: आप खुद के लिए कुछ कर सकते हैं.
0: बिल्कुल. एंड यू पर्टिकुलरली अभी हमारे पास वेकेशंस होती है, एंड नेसेसरीली हम वो चीज़ों पे फोकस करते हैं कि अगर हम चाहे तो ज़िंदगी वो बेहतर बना सकते हैं. हम चाहे तो ज़िंदगी देखिए उदास ही दिखेगी. सो ज़रूरी है, इट्स यू हु हैव टू चूज़ कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है. हमारा पीस, हमारा सेल्फ, हमारा मेकअप, हमारे गुड लुक्स यस, इट्स गुड लुक्स. सो अपने गुड लुक्स के लिए हमने खुद को चुनना पड़ता है. अब हम ट्राई करते हैं कि शो रेडियो गर्ल्स में आप एकदम सही जानकारी पहुंचाए, सही तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करें. तो कैसे कर सकते हैं कम्युनिकेट
1: तो ऐसे ही करना है. 8899-04-904 इज नंबर. यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप. और आप अपने कैसे आप खुद का रिचार्ज करते हैं, व्हाट डू यू डू एक्चुअली, फोन का रिचार्ज नहीं खुद का रिचार्ज क्या होता है, क्या करते हैं आप, हमसे भी शेयर कीजिए.
0: बिल्कुल, क्योंकि ये है हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 99.4 एफएम, हर
1: दिल की धड़कन.
2: कल साडे पिंडो बरात आ रही है.
3: आहो पता मैनु, ओही नंग बरात
2: अपने पिंडा दी पहली बरात आ जिच कुड़ियां भी आउणगीआं.
3: डोडे तां नहीं पीगी किसी दे भुलेखे नाल
4: है, आउणगीआं कुड़ियां बरात.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।
2: खामोशियाँ
0: जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: रेडियो गर्ल्स अब एंजॉय कर रहे हो रेडियो चुना 90.4 एफएम और मेरे साथ असरा है, मैं असरा के साथ हूँ, दोनों एक दूसरे के साथ है, साथ है बिल्कुल। यूजुअली हमारा यही होता है कि हम एक दूसरे के साथ होते हैं एंड वी आर ऑलवेज एक्साइटेड कि भैया जी ये टाइम क्यों जा रहा है, बस इतना ही टाइम क्यों है। बट टू बी ऑनेस्ट कि जो लड़कियाँ एक साथ होती हैं ना, ये हम छू गलत कात की कोई बोलता है कि कोयर छुपे हमान पाछियों मसान तार बार लगा, लड़के भी करते हैं यार, बट पता नहीं लड़कियों का इतना क्यों ये हाईलाइट हो जाता है इमचू दार बार उसका। बट ये जी ये अलग चीज़ है, देखिए लड़कियों जैसा प्यार ना लड़के नहीं कर सकते, ये तो मैं वेट कर सकती हूँ इस चीज़ पे। बट या आपके हिसाब से क्या है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट लाइफ एरा, इसमें ये चीज़ भी आती है ना कि हम पर्टिकुलरली हमारा जो अपना जो फ्रेंड होता है, सखियाँ जो होती है, मज़ा आ जाता है यार अलग ही। जैसे मैं और असरा बात करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि और टाइम चाहिए, ये ख़त्म हो रहा है, हम ट्राई करते हैं कि कब आएंगे, कब कौन सा टाइम हमारे पास फ्री है, वहाँ पे जाके हम अपनी बातें करते हैं। और गलत फहमी है लोगों की उनके बारे में बात कर, अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ है हमने करनी है, नेक्स्ट क्या पहनना है, किस शादी में क्या लगाना है। सो हर चीज़ इन्होंने और मैंने मिलकर डिसाइड किया
1: होता है। और ऑनेस्टली दीपा ये सिर्फ हमारा ख्याल नहीं है बल्कि एज पर साइंस ऑल्सो आई वाज रीडिंग इट सम डेज बिफोर कि ऐसा सच में है कि जो ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन फीमेल टू फीमेल फ्रेंडशिप होता है, वो सुपरफिशियल नहीं होता बल्कि वो बनावटी नहीं होता। जो अगर वो सच में एक केयर दिखा रहे हैं तो सच में केयर होता है। और ऑनेस्टली वो सॉफ्ट लाइफ कहें या फेमिनिटी कहें, एक सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो लड़कियों के पास वुमेन आर मोर इंटेलिजेंट, इमोशनली इंटेलिजेंट।
0: आई बिलीव कि सॉफ्ट लाइफ एरा से बहुत कुछ चीजें हमारी जिंदगी से चली जाती है। जैसे हम कहें कि जहाँ पे हम ड्रेन नहीं करते खुद को ऐसी टॉक्सिक टास्क से या फिर एनवायरनमेंट हमारा टॉक्सिक होता है, सो उसको भी दूर करने में काफी मदद होती है। सो इट्स जस्ट दैट वी एंड आवर रूटीन आवर रिचुअल्स एंड जैसे मैं कहूँगी कि हमारा एक्सपीरियंस काफी रिलेटेबल है मेरा और असरा का, क्योंकि हम भी हमारा भी यही होता है कि गलतफहमियां बहुत सारी होती है लोगों को, पर एक्चुअल में हमारा डिफरेंट ही चल रहा होता है। और जब वो कोई सुनता है बोलता है आपकी क्या जिंदगी है यार। सो इट्स जस्ट दैट कि हम खुश रहने के लिए अपनी चीजें चूज करते हैं, हमेशा खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, हमेशा अपनी खुशी को प्रायोरिटाइज करते हैं। वी बिलीव कि दूसरों में रखा क्या है, अपनी जिंदगी आप बस में बांट लेते हैं।
1: देखिए दीवा जिस तरह से जितने इमोशंस के साथ आपको ये चीज बता रही है कि कैसे हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने लव्ड वंस के बारे में सोचना चाहिए और दुनिया के चार लोग क्या बोले जब हम वो सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे।
0: बिल्कुल, तारीफ करो अपनी, हम भी कहेंगे कि हूरिया तारीफ करे अपने से ज्यादा कोई हीरोइन लगता है क्या। जो चुनार बीट्स आप सुन रहे हैं रेडियो गर्ल्स चुनार बीट्स, तो मैंने टाटा बाय बाय कर दिया है म्यूजिक ऑन डिमांड, अब मेरा और असरा का साथ में चल रहा है चुनार बीट्स हंगामा यानी कि रेडियो गर्ल्स।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अब सब बोलेंगे
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
0: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल
1: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
0: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM

0: देखिए मैं मुझे हवाई कहीं दूर नहीं ले जा रही, यहीं पे हूँ मैं, बस घर जाना है कुछ देर में, और बहाना नहीं है ये, बिल्कुल निभाना है असरा को अपना वादा। शो हंगामा लेकर आएंगी कुछ ही देर में, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट सॉफ्ट लाइफ एरा। तो yes. कैसा मजा आया आपको आज शो में?
1: ऑब्वियसली मुझे भी बहुत मजा आया, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको भी बहुत
0: मुझे बहुत मजा आया। एक रिसेंटली कॉल एक आई थी, बड़ी कट गई, फिर से इन्होंने कॉल नहीं किया। आई वॉज वेटिंग, अब अगर आपके शो में कॉल आ गई तब जरूर रिसीव कीजिएगा। एंड फिर शिकायत रहती है कि आप कॉल्स नहीं उठाते, देखिए हम उठाते, आप ट्राई नहीं करते एक बार फिर से करने का। सो वी आर हियर, हम तो नहीं है, बस असरा है। मुझे थोड़ी सी खुशी है, थोड़ी सी उदास हूँ, जा रही हूँ, पर ये खुशी है कि असरा आपके साथ
1: हंगामा है। झूठ कह रहे हैं, ये खुश है कि ये जा रही है, इनको घर जाना है।
0: नहीं नहीं नहीं, घर तो नहीं जाऊंगी, बट आई विल वेट फॉर हर, इनका शो है, आप एंजॉय कीजिए इनके साथ और 4 बजे तक, एंड उसके बाद देन आई एम लाइक ब्ले ब्ले, यानी कि चले जाएंगे। लाल के लिए हम बात कर रहे थे सॉफ्ट लाइफ एरा के बारे में, एंड आई बिलीव कि खुद को खुश रखना ही, दैट्स द बेस्ट सेल्फ केयर, सॉफ्ट लाइफ, यू कैन लिव। सो फिलहाल के लिए यू कैन लिव ये 2 घंटे असरा के साथ, मैं तो चली, मैं लिबेली चली चली, चलो असरा आप ही संभाल लीजिए, मैं तो चली। आप सुन रहे हो और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीरी रेडियो 90.4 FM,
1: कानों की बल्ले बल्ले।

ऑफेंड डोंट एंग्री मी माइंड इट अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है कोरियोग्राफर को मैं ही सिखाता है वो घर पे आता है मुझसे सीख जाता है मुझसे सीख के वो

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: Welcome to the show Hangama. Oh my God, it was so fun and Radio Girls. और अभी show Hangama शुरू हो चुका है. और Hangama में क्या होता है? Information, drama, entertainment, क्या buzzing है? Life का ऐसा philosophical dot जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलता है. मोहब्बत तो है और इसी मोहब्बत में हम आपको इतना एंटरटेन करते हैं, इतना एंटरटेन इस दीवारों में हम इतना एंटरटेनमेंट भर देंगे तो क्या कहें. बट देखिए आते आते ही प्ले करते हैं कुछ खास कुछ क्रेजी आप सबके लिए. Enjoy कीजिए back to back tracks only on Radio Sonar 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन. और देखिए अभी बहुत सारी चीजें बाकी है, क्या अपडेट्स हैं, किसके बारे में बात करनी है, क्या चल रहा है और क्या क्या होना बाकी है उसके बारे में बात होगी. पर धीरे धीरे बस 4 तक काफी समय है. Enjoy कीजिए back to back tracks में बस यू का यूर यू वापस आए.
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये.

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। जो है हंगामा, जहाँ होता है ड्रामा बट इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स भी होते हैं। और अभी की बात करें तो इट इज़ द टाइम कि हम आपको बताएं कि क्या चल रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में। जी हाँ, सोशल मीडिया इज़ अ क्रेजी प्लेस टू बी, इट्स अ फन प्लेस टू बी ऑल्सो। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कभी कभी कुछ ऐसी ट्रैक्स, कुछ ऐसे मीम्स अभी ट्रेंड कर रहे होते हैं जो एक्चुअली शायद आपको मालूम भी नहीं होता है कि ये कब रिकॉर्ड किए गए हैं या कब एक्चुअली इंटरनेट पे जो साइबर है वहाँ पे कब अपलोड किए गए हैं। बट एज आई सेड कि सोशल मीडिया इज अ फन एंड अ क्रेजी प्लेस टू बी, तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी ट्रेंड कर सकता है। और आज का एक गाना ऐसा है जो 15 साल पुराना है, द रिमिक्स इज 15 ईयर्स लाइक ओल्ड, बट अगर ओजी ट्रैक बोले तो वो बराबर 20 के 30 साल पुराना है। इट्स अ 90s सॉन्ग और ये गाना है ये। मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। और देखिए, इनके पिया तो टेलीफोन कर रहे हैं, बट आप क्यों नहीं कर रहे हमें टेलीफोन? 8899-904-904 इज नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। और आप भी अपने जो भी थॉट्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, हमसे शेयर कीजिए। और इस गाने की बात करें तो मेरे पिया गए रंगून, इट्स अ रियली ओल्ड सॉन्ग, एक्चुअली 90s का गाना है, ये ओजी गोल्डन एरा का गाना। बट इसे रिमिक्स करके अभी जो भी इसका रिमिक्स है वो भी 15 साल पुराना, and it has gathered around 10 million plus views on Instagram. As I said earlier भी, कुछ दिन पहले भी, कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है दैट इज द ओजी सॉन्ग्स का रिमिक्स, बट आज के रिमिक्स नहीं, एक्चुअली वो Y2K रिमिक्स, जो एक्चुअली 2000s के रिमिक्स हैं, दैट वर वे आउट ऑफ द लीग, वे अहेड ऑफ द टाइम। और अभी वो रिकॉग्नाइजेशन उन ट्रैक्स को मिल रही है। मैं वस्त्रा सुन रही हूँ रेडियो सुना 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन। हंगामा द और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर 90.4 एफएम। और देखिए अभी इट्स द टाइम फॉर डिस्को, नॉट द डिस्को बट द अपडेट ऑफ रेलवे लिंक कश्मीर। और अभी की बात करें तो बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, संगलदन तक जाने वाली लोकल जो ट्रेन्स हैं दे आर एज पर द शेड्यूल, एज पर द समर टाइम टेबल। और आप समर टाइम टेबल अवेल कर सकते हैं फ्रॉम ऑफलाइन एट द रेलवे स्टेशन ऑल्सो एंड ऑनलाइन रेल वन ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप से। इसके अलावा अगर हम बात करें जो स्पेशल सर्विसेज होती हैं, जैसे वंदे भारत है या वैष्णो देवी कटरा जो जाती हैं ट्रेन्स, वो स्मूथली रन कर रही हैं। बट देयर इज़ वन मोर थिंग दैट गवर्नमेंट हैज़ एडेड, जो भी नॉर्दर्न रेलवे है वो स्पेशल सर्विसेज मिल रही हैं फ्रॉम श्रीनगर टू कटरा एंड संगलदन तक। और जो मतलब जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो ट्रेन में आपके साथ ट्रेवल करते हैं, दे मेक श्योर कि आपकी जो सेफ्टी है वो कोई ऑल्टर ना कर पाए, एवरी Everything is under control.

स्पेशली अगर आप लाइव शेड्यूल्स चाहते हैं कि जो अवेलेबिलिटी जो भी रहती है ट्रेन की और टिकट्स जो भी अवेलेबल है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या इन पर्सन भी जा सकते हैं जो भी मेन स्टेशन हैं, चाहे बड़गाम में भी आप इस बारे में बात कर सकते हैं. श्रीनगर इज़ द मेन स्टेशन जहाँ पर आप वंदे भारत और बाकी जो भी स्पेशल ट्रेन हैं, स्पेशल सर्विस ट्रेन हैं, उनका जो है वो टिकट्स बुक कर सकते हैं. और अगर ऑनलाइन की बात करें तो रेल वन इज़ द ऑफिशियल इंडियन रेलवे ऐप जहाँ पर सिर्फ आपको कश्मीर रेलवे लिंक के बारे में नहीं बल्कि पूरे पूरे इंडियन रेलवे के बारे में अपडेट्स, इंफॉर्मेशन, लाइव लोकेशन मिल सकती है. देखिए, दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन, बट एक और बात है जो काफ़ी खूबसूरत है. देर इज़ अ वीडियो दैट इज सर्कुलेटिंग ऑन इंटरनेट. इट इज़ अपलोडेड कल ही, यानी कि 28th of July 2026 को. वंदे भारत ट्रेन कैसे बहुत ही स्मूथली रन कर रही है ऑन द आइकॉनिक चिनाब रेलवे ब्रिज. दैट इज़ एन आइकॉनिक एंड हिस्टोरिकल मूवमेंट फॉर कश्मीर एंड फॉर द सर्विसेज ऑल ओवर इंडिया. देखिए, खिटपिट तो नहीं आपका और मेरा लव है हिट और एकदम फिट है. रेलवे की बात करें, देखिए कहीं ना कहीं से रिलेट करना जरूरी है, मजा नहीं आता वरना. मैं हूँ असरा, सुनते रहिए रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: मैं हूँ आरजे असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: बेबी नी बेबी तेरी अख दे वे डोपामीन, हल्का जा सानू तेरा टच दे वे डोपामीन।

वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम. और अभी वक्त है कि मैं आपको बताऊं कि आज का टॉपिक क्या है, आज का क्या है टॉपिक. और आज का टॉपिक ये है कि जब भी हम अभी कोई भी वीडियो देखते हैं ऑन सोशल मीडिया और वी पोस्ट समथिंग, तो जो प्री प्रोडक्शन चीज़ें होती हैं, दैट इज देयर इज वन मोर पार्ट ऑफ इट, दैट इज एडिटिंग. और एडिटिंग कितनी ज़रूरी है, आज उस बारे में बात होगी. देखिए, आज हम एडिटिंग के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज़ द पावर ऑफ एडिटिंग. और आज हमें जो भी मीम्स मिलते हैं वो एडिटिंग के पावर से ही मिलते हैं बॉस. के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक्चुअली जो एडिटर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, पोस्ट करते हैं लोग, और हो जाता है सब वायरल. बट अभी इस बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं बिकॉज दिस इज़ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज़ द स्कोप इवन इस चीज़ में, कि इस स्पेसिफिक कोर्स में क्या क्या हमारे पास स्कोप भी मिलता है, आगे क्या एज अ करियर

एडिटिंग को हम बना सकते हैं कि नहीं, अभी मार्केट में एडिटर्स की क्या वैल्यू है और क्या हमें सच में एडिटर्स की ज़रूरत है कि नहीं है। मैं मस्त सुन रही हूँ रेडियो सुना 90.4 FM, ये है हर दिल की धड़कन। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: Tuned into the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन और बिल्कुल अभी हॉरस फ्रीक्वेंसी पे शो चल रहा है हंगामा। मैं हूँ आरजे असरा और आज हम एडिटर और एडिटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट इज सो पावरफुल अबाउट एडिटिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि एडिटर का काम क्या होता है। एडिटर का काम होता है कि जो भी वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली चाहे वो होस्ट बोल रहा है या क्लिप से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमें यानी कि ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दैट शुड बी क्लियर। एक फ्लो होना चाहिए वीडियो में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग एक शॉट या एक क्लिप एक डिफरेंट चीज़ की है, दूसरी क्लिप किसी दूसरी चीज़ की है। सो देयर शुड बी अ फ्लो। दीज आर द साइंस, दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड एडिटर। जी हाँ, क्लैरिटी और फ्लो के अलावा एक जो एडिटर होता है, जो भी एरर्स

होते हैं उसको एडिट कर देता है। उसका मतलब ही ये है, उसका काम ही यही है कि हर कोई चीज़ जो फेमिलियर नहीं है, हर कोई चीज़ जो सही नहीं है, बिकॉज हो सकता है कि रॉ फुटेज उनके पास आती है तो दे मेक इट इन अ वे कि वो वीडियो को पॉलिश करते हैं। उसके बाद बात करें अगर टेक्निकल चीज़ों की बात करें तो एक पेसिंग ज़रूरी है कि किस पेस पे फास्ट स्टोरी होनी चाहिए, स्लो स्टोरी होनी चाहिए। फास्ट यूजुअली एनर्जेटिक पॉप में इस्तेमाल होता है, स्लो यूजुअली जो स्टोरी टेलिंग एक कहते हैं ना कि वो एक इमोशन से भरा हुआ एक स्लो फील आना ज़रूरी है। सो देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो एक एक्चुअली क्रिएटिव सेंस होना चाहिए एडिटर में, उस वजह से वो इमोशंस किस तरह से ऑडियंस को महसूस कराएंगे, ये भी मेन पार्ट है। वीडियो बनाना चाहे वो कोई भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड हो, चाहे उसमें होस्ट हो या नहीं हो, बट जो इमोशंस का जो हाफ ऑफ द पार्ट है दैट इज अप टू द एडिटर। ऑडियंस को हमें दुखी महसूस कराना है, खुश महसूस कराना है, एक्साइटेड महसूस कराना है, इट गोज अप टू द टाइप ऑफ एंड स्टाइल ऑफ एडिटिंग एंड एडिटर चूजेस। एंड उसके अलावा ये भी कि किस तरह का म्यूजिक वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अलावा ये भी है कि जो लाइट और कलर का रहता है, कलर ग्रेडिंग है आजकल बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, सिर्फ और सिर्फ वीडियोज़ के लिए ही नहीं बल्कि फोटोग्राफ्स के लिए, जो फोटोग्राफी करते हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो कलर्स को समझें। कलर्स को समझना, लाइट को समझना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, एंड द मोर यू नो अबाउट लाइट द मोर यू नो अबाउट कलर्स। इट्स नॉट जस्ट कि जो लाइट आपके पास नेचुरली प्रेजेंट है या आपके पास स्पॉट लाइट्स हैं, आर्टिफिशियल लाइट्स हैं दैट यू यूज़ इन द स्टूडियोज, इट्स अबाउट कि आप किस तरह से द एडिटिंग पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट जब से आप वीडियो शूट करते हैं या किसी वीडियो का जो मटेरियल जो रॉ फुटेज है वो जब आप कैप्चर करते हैं, गैदर करते हैं, एडिटिंग उस पॉइंट से शुरू होती है, बिकॉज वहीं आपको समझ आता है कि इस वीडियो में आप क्या क्या इम्प्रोवाइज कर सकते हो, कौन सी इसकी अच्छी क्वालिटीज हैं, कलर्स हों या फ्रेम्स होते हैं, सेट्स होते हैं या कुछ ऐसे लाइटिंग, एक लाइट्स में ही इतना खूबसूरत सा एनवायरनमेंट आप क्रिएट करते हैं दैट इज़ वेरी प्लीजिंग टू द आईज एंड फॉर द ऑडियंस। सो क्या आप वीडियो को इतना एम्पलीफाई कर सकते हैं, उसकी जो नेचुरल ब्यूटी है, पॉजिटिव्स है उन्हें एम्पलीफाई करना और नेगेटिव्स को कट शॉर्ट करना, ये है एडिटर का काम। बिल्कुल, वी ट्विस्ट एंड द एडिटर हैज टू ट्विस्ट द वीडियो इन अ वे कि पॉजिटिव विल बी मोर पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आर कट डाउन। मैं हूं अस्ट्रा, सुनते रहिए वीडियो सुना 90.4 FM। और आप बताइए कि आपको एडिटिंग के बारे में कोई नॉलेज है, या अगर आपको एडिटिंग में इंटरेस्ट है, क्या हम एडिटिंग में अपना करियर बना सकते हैं, वो मैं कुछ ट्रैक्स के बाद बताऊंगी। बट फिलहाल के लिए एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुनार, क्योंकि बैक टू बैक ट्रैक्स से वादा रेडियो सुनार देता है सबसे ज्यादा।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: हाय, मैं हूँ असरा और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 एफएम, द हारेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्थ कश्मीर। हंगामा इज अ शो बट एडिटिंग इज द न्यू पावर, और आज हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। एंड राइट नाउ देखिए, इससे पहले कि मैं बात करूं कि व्हाट आर द फ्यूचर एस्पेक्ट्स, व्हाट आर द स्कोप, व्हाट इज द स्कोप ऑफ एडिटिंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड, बट अभी मॉडर्न वर्ल्ड में, मॉडर्न एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में, या जो भी सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग है, एफिलिएटेड मार्केटिंग है, उसमें किस चीज़ की क्या स्किल होना चाहिए रिलेटेड टू द एडिटिंग, अभी पहले उस बारे में बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि आज के बच्चों की बात करें हम, आज की ऑडियंस की बात करें, तो उनका जो एडिटिंग जो चाहिए उन्हें, वो वैसी चाहिए कि जिसमें रिटेंशन रहे, यानी कि जो भी आज के बच्चे हैं, जो भी सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उनका जो रिटेंशन है, जो वीडियो, जो अटेंशन रिटेंशन है, जिसे हम कह सकते हैं अटेंशन स्पैन जो है, वो कम हो चुका है। सो ज़रूरी है कि साउंड इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, लाइक मल्टीपल स्टिमुलस होने चाहिए, तब वो किसी एक वीडियो पे रुक सकते हैं। और जैसे कि हुक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट 3 seconds आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ वीडियो, बिकॉज दैट इज द हुक, और उस वजह से पहले ही 3 seconds डिसाइड करते हैं कि कौन ऑडियंस, जिनका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो चुका है, वो आपकी वीडियो देखेंगे या नहीं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एडिटर जो भी हो, उसे क्रिएटिव सेंस होना चाहिए, कोहेसिव स्टोरी लाइन वो बता सके अपनी एडिटिंग से, और कहीं ना कहीं जो भी उन्हें लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो होस्ट हो, या जो भी जहाँ से रॉ फुटेज आ रही है, वो चीज़ें जो हो, उन्हें मालूम नहीं होता कि क्या ये चीज़ें क्या वैल्यू रखती हैं, बट एक एडिटर के पास अगर वो सेंस हो, तो ही नोज़, ही और शी नोज़ कि भाई जो एक हमारे पास जो रॉ फुटेज आ रही है, उसके चलते हम एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, जो रॉ डिलीटेड फुटेज होती हैं या डिस्कार्डेड फुटेज होती हैं, उनमें से सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट्स और शॉट्स निकलते हैं। और आज की जो डिमांड है सबसे ज़्यादा, दैट इज़ कि आप फन सेगमेंट या वायरल मटेरियल बनाएं, बट इमोशनल इम्पैक्ट के साथ। जब तक आप किसी इंसान को कुछ सिखा नहीं रहे अपने वीडियो से, व्हाट आर दे गैदरिंग फ्रॉम इट? सो इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडिटर कि वो वैसे मूवमेंट्स, वैसे स्टेटमेंट्स, वैसी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करे, और जो एक प्रोडक्शन चलता है, जिस तरीके से एक प्रोडक्ट जो निकलता है, एक वीडियो जो भी, एक प्रोसेस्ड वीडियो जो निकलता है, या प्रोसेस्ड फोटोग्राफ जो निकलता है, या प्रोसेस्ड ऑडियो जो होता है, वो इस तरीके से होना चाहिए कि लोग उसे पसंद करें। और सबसे बड़ी बात जो है, वो ये होना चाहिए कि इट शुड बी लाइक एक्सेसिबल फॉर द पीपल हु आर नॉट एबल टू लिसन। जी हाँ, ये बहुत ही लाइक नॉन पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, बट अभी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल हु आर विद डिसअबिलिटीज, और सो मेनी पीपल हु कांट वॉच वीडियोज ऑन वॉल्यूम। सो इट इज़ सेड, it's a research, it's a an article also there about it, that aaj ke jo bhi videos hai social media pe, it's very important ki subtitles hona zaruri hai, captions hona zaruri hai, aur taki log aapka video aur zyada process kar paye, aur unka attention span jo hai wo रुक पाए, और वो आपकी वीडियो बराबर देखे। अब देखिए, हम इतने जद्दोजहद कर रहे हैं कि लोग

हमारा वीडियो देखे. बट ये सब क्यों होता है? वो इसलिए क्योंकि अभी का यू हैव टू चेंज योर वेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू द कल्ट यू आर सर्विंग. यू नो वट आई मीन? बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जिस ऑडियंस के लिए काम कर रहे हैं, यू हैव टू नो योर ऑडियंस, यू हैव टू नो योर एज ग्रुप. जो कुछ भी आप कर रहे हैं, किस तरह का वीडियो है, यूट्यूब कॉन्टेंट है, इंस्टाग्राम कॉन्टेंट है, ट्विटर कॉन्टेंट है, एक्स जिसे हम अभी कहते हैं, या फेसबुक कॉन्टेंट है, यू हैव टू मेक इट डिफर्ड, यू हैव टू मेक इट डिफर आपस में, यू हैव टू हैव डू योर होमवर्क बिफोर डूइंग एडिटिंग. और देखिए, जैसे कि आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास फोन या डिवाइस कोई भी हो और दे थिंक कि दे आर रियली गुड एट एडिटिंग. दैट्स नॉट द केस. अगर आप दो फोटोज एडिट कर सकते हैं, अगर आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, बट फिर भी एक एडिटिंग का एक क्रिएटिव एक पर्सपेक्टिव होना चाहिए और वो सबके पास नहीं होता. और दैट मेक्स यू अ बेटर एडिटर देन अदर पीपल. मैं मसरा सुन रही रेडियो सुना 90.4 FM. मैं बस यूं कही और यूं वापस आई. और वापस आने के बाद हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, दैट इज़ करियर as being an editor. So stay tuned to the hottest frequency of North Kashmir 90.4 FM. La, la.

सुन रहे हैं रेडियो चना 90.4 FM।

अरे वेलकम है जी, वेलकम बैक टू द हॉरर फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है शो हंगामा। शो है हंगामा और अभी हम बात करने जा रहे हैं करियर गाइड फॉर बीइंग एन एडिटर इन योर लाइफ और लर्निंग एडिटिंग फॉर फ्रीलांसिंग या पार्ट टाइम या फुल टाइम इन व्हाटसोएवर मैनर यू वुड वांट टू डू। और स्पेशली अगर हम एडिटिंग की बात करें, काफ़ी स्किलफुल कोर्स है, काफ़ी स्किल ओरिएंटेड जॉब है। इसमें ऐसा नहीं है कि यू जस्ट हैव टू यूज़ योर ब्रेन, यू हैव टू यूज़ योर हार्ट because it's about creativity, you have to use your skill, that is your brain, and you have to use your hands, of course, that is a man power. So ye ek bahut hi ek kehte na aggressive field hai jahan pe you have to aggressively work ek aisa, and honestly sirf aur sirf kaam nahi karna hai balki agar abhi ki demand dekhe that is also aggressive. Abhi jo bhi ads hote hain, abhi jo kuch bhi hota hai, abhi specifically agar hum media ki baat kare, डिजिटल मीडिया की बात करें, डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, फाइनेंशियल टेक कंपनीज की बात करें, हेल्थ कंपनीज की बात करें, हेल्थ केयर या सोसाइटल एंटरटेनमेंट, रेडियो, एनीथिंग, अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो वहाँ पे द मेन पर्पस जो अभी आता है दैट इज सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज द मेन गो एंड सो ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी कंपनी, अगर किसी की भी कंपनी है, तो वहाँ पे एक मतलब एक पोस्ट ज़रूर होता है, दैट इज़ एडिटर्स, एडिटर्स का पोस्ट होता है। सो जो एग्रेसिवली अभी हायरिंग होती है एडिटर्स की, सो डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, बट द पॉइंट इज़ कि क्या आपके पास वो स्किल्स हैं दैट यू कैन बी अ गुड एडिटर। और जो भी स्किल्स की ज़रूरत है उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, क्या क्या चाहिए होता है, कौन से स्किल्स चाहिए। सिर्फ आपके पास स्किलफुल ही नहीं, आपकी एक क्रिएटिविटी बिल्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इस फील्ड में कि आप अगर टेक्निकली खुद को फिट करते हैं, आप अगर स्किलफुली आज के जो नीड्स के हिसाब से, यानी कि आज का नीड इफ़ वील टॉक अबाउट दैट इज़ कि AI एक बहुत इनकॉर्पोरेटेड आपके स्किल में होना चाहिए। Artificial intelligence should be incorporated in your field, in your skill. You should know about AI tools because that will make your work easier. और उसके हिसाब से अगर देखा जाए, अभी AI और editing की demand काफ़ी ज़्यादा है. So if you are an editor who knows AI tools also, then स्पेशली अगर इस फील्ड की बात करें तो आपकी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव डिमांड है। और अगर इफ वील टॉक अबाउट द रेवेन्यू दैट यू कैन गो फॉर, जूनियर टू एंट्री लेवल इज़ 4 लाख पर एनम तक अगर जा सकते हैं, मिड लेवल की बात करें तो 10 लाख पर एनम, एंड अगर हम सीनियर जो जिसके AI टूल्स भी होते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी होता है इस फील्ड में, हु नो हाउ प्रोडक्शन हाउसेज वर्क, तो बेसिकली 24 लाख से ज़्यादा पर एनम आप कमा सकते हैं। सो हमेशा ये कहा जाता है, जो माँ बाप कहते हैं कि आप बस 12वीं कर लो, 10वीं कर लो, ये कर लो, वो कर लो, फिर मजे ही मजे हैं। बट अगर सीरियसली बात करें तो हर कोर्स में, हर फील्ड में एक आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने आप पे काम करें, आप चीज़ें सीखें, स्किल्स बढ़ाएं। यू हैव टू बी अ पैकेज ऑफ एवरीथिंग। और स्पेशली अगर क्रिएटिव ओरिएंटेड फील्ड्स की बात करें देन यू हैव टू लर्न उसी हिसाब से जिस हिसाब से ऑडियंस डिमांड है। अब इसलिए कहते हैं कि माँ बाप हमें कहते हैं कि आप मेहनत कीजिए, फिर ज़िंदगी में मज़े ही मज़े हैं। अरे मैं, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, मेरा जूस कहाँ है। पर वैसे मज़े तब आते हैं जब आप मेहनत करते रहें, एंड यू आर द लाइक पर्सन हु हार्ड वर्क्स एंड वॉन्ट्स टू लर्न मोर अबाउट द लाइफ। मैं हूँ असरा सुंदरी, रेडियो सुना रहा। अभी भी थोड़ा वक्त बाकी है आपकी और मेरी कॉन्वर्जेशन का, सो जुड़ते रहिए और बनते रहिए शो का हिस्सा। मैं हूँ असरा सुंदरी, रेडियो सुना 90.4 FM। मैं बस यूँ कही और यूँ वापस आई।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

चिनार, रेडियो चिनार पे आपके विचार ब्रॉडकास्ट होते हैं, पर अभी जब 4 बजने वाले हैं और आपका और मेरा साथ यहीं तक था। जी हाँ, जा रही हूँ मैं, बट इस बात का वादा जरूर करूंगी कि कल वापस आऊंगी बराबर 2 बजे। 2 से 4 रेडियो चिनार पे होता है शिव हंगामा।

0: चीजें करते रहिए और अपनी खुशी को सबसे आगे रखकर बाकियों के बारे में ना सोचे। फेयर ऑफ जजमेंट हो, लोग क्या कहेंगे, चार लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं वो उन्हें सोचने दीजिए। हम अपना काम करते हैं और अपना ख्याल रखेंगे। और ऑनेस्टली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी सोल को रिचार्ज करें। अभी के टाइम पर दुनिया के जो भी लोग हैं उनके पास सब है, कहीं ना कहीं उनके पास हर कोई वो ब्लेसिंग है जो वो चाहते थे, बट एक चीज़ नहीं है, दैट इज़ मेंटल पीस। और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो तब हमें हासिल होती है जब हम खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोलने में लगता है कि बहुत किताबी बातें हैं बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब तक आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तब तक आपकी लाइफ में चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी।
1: तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार।
0: आज के लिए बस इतना ही एंड साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड सुन रही है रेडियो सुना 90.4 FM। मैं आज जा रही हूँ, कल वापस आऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, साइनिंग ऑफ एंड ओवर एंड आउट।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले

मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4-4-6-4 1-8-0-0-1-8-0-7-1-7-8 1-8-0-0-1-8-0-7-1-9-9 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्दी
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with Harshi Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464-1800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM। Chin up, chin up, chin up, chin up, chin up. It's R&B.

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
1: The game is on. Tune into Radio Chunar 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chunar 90.4 FM. 4 FM.

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का। शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।
1: कोक स्टूडियो भारत, सब्सक्राइब नाउ।
2: फादीनो हजरत मुख्तसर बात साहिबे मस्तन सुनो।

0: वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 जय बाबा बर्फानी।

0: मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं।
1: अरेस्ट इज द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द ड्रग क्राइसिस दैट हैज बीन प्लेगिंग फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स।

0: जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अवर सोसाइटी। लेट अस से हाई टू लाइफ एंड बाय टू ड्रग्स।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

हर साल की तरह इस साल भी रेडियो चुनार 90.4 FM पावन अमरनाथ जी यात्रा के सफर में हर पल आपके संग। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 बुलावा बाबा बर्फानी का शुरुआत 3 जुलाई 2026। अगर आप भी इस पावन यात्रा का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो ध्यान रखिए कि आप फिजिकली फिट हैं। अपने डॉक्टर से संपर्क करने के बाद ही श्री अमरनाथ जी यात्रा का प्लान बनाएं। पोर्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई का साथ होना जरूरी है। कोई भी हेल्थ इश्यू होने पर नजदीकी मेडिकल कैंप विजिट करें। यात्रा से पहले मदरा या दुम

धूम्रपान का सेवन ना करें। मौसमी बदलाव से निपटने के लिए अपने साथ गर्म कपड़े, छतरी, रेनकोट और वाटरप्रूफ शूज जरूर रखें। अपने साथ आईडी कार्ड्स और यात्रा परमिट जरूर रखें। जम्मू और कश्मीर से बाहर के प्रीपेड सिम यात्रा एरिया में नहीं चलने पर आप बेस कैंप में प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड्स पा सकते हैं। कोई भी असुविधा या इमरजेंसी हालात होने पर आप नजदीकी बेस कैंप से कांटेक्ट करें या आप ऑफिशियल यात्रा हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा हेल्पलाइन 1-4464 1-800-180-7178 1-800-180-7199 श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026। जय बाबा बर्फानी।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले वुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर, कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
0: दिल को
4: करार आ जाए
0: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
4: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
4: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।

0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।
0: पानी, पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
2: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 एफएम एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
0: करार आ जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
0: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।
0: स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: तभी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको दांत कुछ नहीं कहते, मगर मगर

जिगर चैन आराम राते सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं, सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं। देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं, मगर मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM। दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात लेकिन एक बात।

0: बता दूं?
1: हाँ,
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पर रुमाल रख दो, बस समझ जाओ।
1: हाँ,

चाहे भीगे तेरी चुनरिया, चाहे भीगे रे चोली।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप इन्हें सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कही ना।
2: सा सारे का दम पा पा मगा दम पा पा मरे मागा।
3: हाँ।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ।

0: लूंगी फोर।
1: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
0: तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय, मुझको बना गए बावरिया।

0: अब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, तारा रा रा रा। जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हमके वो थी और समार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

धीरे धीरे मैंने खींचा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, हम थे वो थी और हमार रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: यूं ही साथी
1: है बंदी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: दे, जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

खुशबू फिजा में बिखर जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो, धड़कन जब सुरीली बन जाए तो समझ लेता हूँ कि तुम हो।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: पे।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।